0: अपना सजीवी सेवा जिस हो
1: देश हो खुशी को कनेक्शन
0: आयुर्वेद तथा बैकोटिक चिकित्सालय काठमांडू में पायस फिस्तुला फिसोर लगायत का रोग दैनिक विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
2: विशेषज्ञ सेवाहरू निःशुल्क शल्यक्रिया सेवा अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक द्वारा उपचार छाल सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को सुविधा दैनिक ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा
0: रोग लुकाएर नराखौं समयमै परीक्षण गरौं।
2: थप जानकारी का लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौं फोन 01-4110-6690 41106690
0: स्वस्थ जीवन का लागि आयुर्वेद अपनाओ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न

पाए विदेशी विद्यार्थी को संख्या स्वतः बढ़ने जाने बताने आज को कांतिपुर दैनिक में यह खबर इसी सरकार ने कक्षा पास में अध्ययनरत विद्यार्थी आंतरिक परीक्षा लिख बंद करे मूल्यांकन का विद्यालय वैकल्पिक विधि अनुसरण करना शुरू में वैकल्पिक विधि विद्यार्थी को मूल्यांकन कर असहज महसूस भले बानी पड़े और इसमें संबंधित शिक्षक प्रतिक्रिया दिया तर एक कक्षा में धेरे विद्यार्थी

0: सुली दमकल एम्बुलेंस को फोन नंबर जुनसुक समय में चाहिन सकता कण चपारों व सबले देखने ठा में राख
1: सावजनिक हित का उज्यालो को अनुरोध।

0: भर्ना सम्बन्धी एक सोलिकुंडू कानून कैंपस में शैक्षिक सत्र 2086 संघासी को तीन वर्ष ग्यालरी प्रथम वर्ष को भर्ना खुले हुआ कुछ विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्नअनुसार भर्ना होने जानकारी कराई भर्ना कार्यक्रम को मिति भर्ना के लिए आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गति देखि भदौ 30 गति समय प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते नोटिसा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना मैथ असोज 12 गति देखि असोज 25 गते समय कक्षा संचालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने मैथ क्लास 30 गते समय सब जानकारी के लिए 98150105 98146 98482487 गीता घिमिरे कैंपस प्रमुख सोलुखुम कानून कैंपस पल्ली
1: डोजर चलेको नि
2: अब त हाम्रा दुःख का दिन सकिए
3: के सकिनु नि गाउँ मा सड़क बने पनि बसाई हिड्नु पर्ला भन्ने डर छ रात भरि सुत्न सके हैन
1: हैन किन माइरी भाउजू अब गाडी चलेपछि हामीलाई नि सजिलो हुने हो क्या हिँड्ने मात्रै होइन हाम्रो जस्तो पछि पारिएको क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात पनि चल्नु पर्छ भनेर हामीले नै माग गर्नुपर्छ क्या
3: सड़क बन्दैमा के नै भइहाल्छ र जथाभावी बाटो खनेकाले टारी खेतमा पहिरो जान थाल्यो पर्तिरको मुहानको धारा पनि सुक्यो अब पानी लिन 2 घण्टा तल खोलामा पुग्नुपर्छ बाटो मात्र भएर के गर्ने
2: हो त है हामीले त ध्यानै नदिएको
3: त्यही त भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्छ तर वातावरण बिगारेर होइन वातावरण बचाएर
4: विकासका नाममा विनाश ननिम्त्याउ नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
5: और प्रिंट मुजुकर को वेतन भग तवारी साधन को निर्भर एक गणेश संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाने पड़ने सवारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर संबंधी वितरण हेन का संबंधित यातायात कार्यालय में गए कर प्रिंट मांग बैंक भोक्षर करना अगि सवारी कर तथा वस्तु एक तथा कर बुझाए पी प्राप्त होने बीमा आपने बुझाई कर को रकम आपको सवारी नंबर एक सूचना मार्फत अनुरोध
6: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई। अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन क्षेत्र
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्भदो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नयाँ नयाँ वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति

0: सड़क प्रायो गर्दा ध्यान दिउँ। सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौ। सड़क सीमामा अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौ। सड़कको नाली थल तथा पानी निकास बन्द हुन नदिउँ। सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं। सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं। सवारी साधुमा थुम्बिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं। सड़कको क्षमता भन्दा बढी भाग प्रयोग नगरौं। जेब्रा क्रसिङबाट मात्र बाटो काट्ने गरौं। सड़कको तत्काल मर्मतीमार गर्ने गरौं। यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी
2: सन्देश। मोबाइल ड्राइभिङ टाइम प्रेम गर्ने युगल जोडी स्पिडमा हुँदा अझै भए बोबा आमा दुईजनै स्वेकिदा।
0: सड़क प्रयोग गर्दा ध्यान दिउँ। सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौं। सड़क सीमामा अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौं। सड़कको नाली थल तथा पानी निकास बन्द हुन नदिउँ। सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं। सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं। सवारी साधुमा थुम्बिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं। सड़कको क्षमता भन्दा बढी भाग प्रयोग नगरौं। जेब्रा क्रसिङबाट मात्र बाटो काट्ने गरौं। सड़कको तत्काल मर्मतीमार गर्ने गरौं। यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गराउँ।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: उज्जवल एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: देखिए जिसमें हो हम लोग वही रोजाई
1: उपभोक्ता अधिकार को उसको मोक्षण गराऊ गृहस्थी वस्तु तथा सेवा प्राप्त भई उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गराऊ कारोबार में बिल विशोक लिने दिने गराऊ कारोबार पारदर्शी बनाऊ नाफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना बनाऊ वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्याद सही नीति गुणस्तर एक करे मात्र खरीद बिक्री कराऊ वस्तु व सेवा को प्रयोग कने हानि नुकसानी भे स्थानीय प्रशासन में उसूरी कराऊ वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पूरे क्षतिपूर्ति मगाऊ निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाने उपभोक्ता अधिकार की रक्षा कराऊ भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना के कारण उपभोक्ता छोड़ने स्थानीय प्रशासन में उसूरी कराऊ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोष प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
2: खुम्बू कानून कैंपस में एलएलबी में भर्ना संबंधी इस सोलू खुम्बू कानून कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083 संगाठन को लगी तीन वर्ष एलएलबी प्रथम वर्ष को भर्ना खुलेक हुआ कने विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्नअनुसार भर्ना होने जानकारी कराइन भर्ना कार्यक्रम को नीति भर्ना के लिए आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गति देखि भदौ 30 गति समय प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते नोटिशा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना मैथ असोज 12 गति देखि असोज 25 गते समय कक्षा संचालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने मैथ कार्तिक 30 गते समय सब जानकारी का 98150105 98148445 र 98424875 गीता घिमिरे कैंपस प्रमुख सोलुखुम्बु कानून कैंपस पल्ली आँखा सम्बन्धी समस्या भएकाहरूलाई सम्पूर्ण सेवा सोलुखुम्बु आँखा उपचार केन्द्रबाट सम्भव छ
3: सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 5 सलेरीको बुद्ध भागमा रहेको सोलुखुम्बु आँखा उपचार केन्द्र सोलुखुम्बुमा आँखा सम्बन्धी समस्या भएकाहरूलाई सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिन्छ सोलुखुम्बु जिल्लामा जन्मिएर आँखा उपचार सम्बन्धी दक्षता हासिल गरेको साथै जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र फाप्रीमा 1 दशकभन्दा बढ़ी लामो समय काम गरेको अनुभव लिएका दिनेश साईद्वारा सोलुखुम्बु आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छ दक्ष र अनुभवी दृष्टि विशेषज्ञ साथै ओए मार्फत सुरक्षित तरिकाले आँखाको उपचार गरिन्छ दृष्टि एवं चश्मा जाँच आँखाको नानीबाट फोहोर निकालिन्छ आँखाको आँडो निकाल्नको साथै कम्प्युटरबाट आँखाको जाँच गरिन्छ आँखाको जाँच पड़ताल कम्प्युटर प्रविधिबाट चश्मा फिटिङ गरिन्छ चश्मा एवं सनग्लास खरिदमा 10% छुट दिइन्छ विद्यार्थी

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक को साथ
2: न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्गुम नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू।

मुस्लिम प्रदेश का पहाड़ी भाग का एक दुई ठाव में ठूल पानी पर्न सकने भाई सावधानी अपना आग्रह कर रौतहट को गोरुड़ा नगरपालिक पोटियाही भारत को झारखंड में रहकर बाबा बुद्धनाथ वासुकीनाथ दर्शन करना पुगे यात्री चढ़े बस दुर्घटना दुर्घटना में

पार्टी अघि बढ़ने नेता शशांक कोईराला को भनाई सुदृढ़ता आवश्यक रहकर संस्थापन पक्ष का उपसभापति शर्मा को जोड़ सरकारी कर्मचारी भविष्य भर्मी में पूर्व स्वीकृति अनिवार्य नया मापदंड लागू काठमंडू विश्वविद्यालय को उपकुलपति में डाक्टर बराल नियुक्त सर्पदंश रेबीज विरूद्व को खोट भित्रियो अखी अभाव पर्ने खाद्य कंपनी को सुपत्रिय पसल अब वर्षभर संचालन होने जवान सीमा का 193 बिक्री केन्द्र उपभोक्ता राहत होने अपेक्षा अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास को तैयारी उत्तर कोरिया द्वारा नया प्रतिरोध को चेतावनी एसीसी प्रीमियर कप खेलने नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली को विदाई आज को नेपाल दर्पण सकिएको छ प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट संगे हमी महेश गेवाली र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौं यात्रा गर्दा मौसम र सड़क को अवस्थाबारे जानकारी

लसो योग्याले नानाला दुगु तिनी यंग चुरंग जम्म लिंग्री चिबमुला तुरी लानन आजबा ताम गादिसे प्लिंगमुला चु जम्म लिंग्री यंगसे सेमरी संदुष्ट लसी चिखम्बा आरे तिनी चुरंग जम्म लिंग्री ज्याबल लसी चिबारी यंगदा स्थानदी यंगबारी ज्याबल लसी चोबारी सेमला संदोकला लागिरी परमेश्वर वचन यंगसे यंगदा लोपंगना थेबंदा नाचा यंग सांजुगे गोर्गी वाई।

आदरणीय श्रोताहरू मागदै प्रभु येशूलाई पवित्र मिन्दे जयमसे अनि फ्याफुला न्याङ्जे यार्बला केतङ्गे परमेश्वरलाई वचन क्याम्जे प्रभु येशू शिव क्याम्जे बौरी रेन्बा विवाह बारेले संशय बलमुला ठेक्याम्जे याङ्जे लानन आशिष यालमुला तिनी न्याङ छार जीवन तोन्बा विवाह विषयरी संशयलमुला प्रिय रोमा गदे रङ्गनीला चिठी पत्र एसएमएस कदे प्रतिक्रिया कदे नन्जे प्राप्त लडिबन मुला अनि रङ्गनीला प्रार्थनाला विषयरी प्रार्थना लडिबन मुला प्रिय रोमा गदे रङ्गनीजे चो मार्गदर्शन केतन रङ्गनीला रङ्गलान केतन हिन्ब मुला बेसी नन्दा पत्र पुहा बदा थाम्ले शिवको बेसी अनुरोध लब मुला प्रिय श्रोता पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल युहन्ना 3 अध्यायला 6 पद हिन्जे 8 पद सम्मति न्याङ मनन लसेलमुला नै प्रतिमुला रङ्गनी जे संशिगो येशु जे सुङजी हिन्मानो नै यत पाङमुला कोही छार तसी जन्म आदिनि विषम थेजे परमेश्वर राज्य त मराङमा अहम शरीर क्याम्जे नबला शरीर हिन्ना अनि पवित्र आत्मा क्याम्जे नबला आत्मा हिन्ना नै यत छार तसी नदब मुला पंक्षी पाङमा अचम्मा थाङम्गो लाबहास हाबा लाबहास यार्बा होसन यार्बा मुला ए लाबल आवाज सानबा हाम्बा मुला तर थे हानङ क्याम्जे हाबा अनि हासो यार्बा थे आसेब मुला आत्मा क्याम्जे नबला हरेक मि हेरङ मन तब मुला बेसी येशु प्रभुजे राङला वचन लि सुन्जे जो घटना त याङजे विचार लसी सिज विषम प्रिय रोमा गदे यहुदी समाज रे निको देमास मिन लबला कोर्की प्रसिद्ध मि मुबला यहुदी समाज ला सदस्य नु हिम्म मुबला थेजे येशु जे लस्युबल आश्चर्य रखे अनि येशु जे दोनबला उपदेश अनि यहुदी व्यवस्था त प्रतिशी सीमाले येशु ख्रिस्ट परमेश्वरला चाहिन्दा विवाद था याङ्गे अनि थे समाज क्याम्जे लोङसी न त समाज खलाला कि समाज आज भ पाङला कि पाङसी थे लोङमा मोबला थे दैरी थे मुनङ लालटिन नसी येशु जा चु प्रश्न लबरी हाजी अनि येशु जे चु जवाब निको दिमास दोन्सी भमुला अनि थे जे थे बाद आगो भमुला ए यहुदी कदेला यतै नछ्याङ सदस्य तसिनो ज्ञान देन बुद्धि जे धर्मशास्त्र जे लिङ्गमला व्यक्ति तसिनो चु बाद अगोनी विषम स्यान्दो जे हरणले कोसे दिव प्रश्न येशु जे लास्यो जे थे जे उत्तरी पाङ मुला आमाला गर्व ग्याम्जे नसिनु फेरि थे खेपतोसी हरङले आमलको क्याम्जे नभहामसे येशु जे चुरी थेला आत्माला बाद सुङमला मुला तर थे जे शरीर लताम पाङजे तिनी संसारी लानन जवान व्यक्ति का देमुला तर थिङी का देला शिक्षा जे लसे शरीर तामजे नाङमा मुला अनि वास्तवले येशु जे थेला आत्मामा चिन्ता लसिब मुला वास्तवले एदेन न छार दसी हृदय परिवर्तन तब अहम्नी विषम न्याङ रङ्गजे रङ्गन सुधार लबा अहम्ब मुला न्याङ ल छिमेक न्याङ ल समाज न्याङ ल टिम न्याङ ल जिल्ला न्याङ ल देश हरणले परिवर्तन त प्रिय रोमा गदे तिमी एदेन हृदयलाई परिवर्तन तब त खाँच मला येशु ख्रिस्टी छार तसे जन्मैकी बद लानन खाँच मला एदेन नै वास्तवरे येशु त जब सेम नाङजे म सेव मुला विश्वास लब मुला अनि ग्रहण लब मुला विषम ठे याङला हृदय चुनहाब मुला अनि थेला उपस्थित जे न्याङला हृदय परिवर्तन
tabamula. Nyang kharap tabala dekti chaba tab hamamula. Ab raksi je nang balami chela chutkara tab hamamula. Achyama sabta je pangbami suddha tab ani paribartan tab hamamula. Namrata boli dayalu ani thela jibandi tab hamamula. Ani aku bad rangni da tini rangni la agadi nai chu bad angji nyangji bichar lai tasi bisham prabhu yesu ji nyangda maya la shubamula. Ani aku bad rangni da chori mubamula yesu ji hote sungin mahenje niku demas min labami thyama kyamje yarji khas gari the yesu da grahan Labari pangsi habala mobala, thela semla, tam, ridela tam yesuje, kosyoje. Ani arko, lari teje, erongli sung mamala, tu changman, shando halje labahama, ani yesu Christ bahek shando halje nu laba ahambamala. Parmeshwar la maya, nyangla bisri, erongli prakarta jiki, teje rangla, korki je, mobala chanu. Jo sansari pui haji taki chakyamje nyang sobaham gai parmeshwar la maya chori mulaki nyangje maya labala ahin ki theje nyang la maya lasyubala hinna ani nyang la pap la udar chutkara labada ram la cha pui hasyu ji yohanna 4 adhyay la 9 hinje 10 padri Erongle privalamala. Tare ananta jivan jo hinna ki thengi kade je ek kor ki je satya parmeshwar hinna ani rang je puihavala yesu da mase gai. Priya roma gade prabhu yesu la maya kati achammalamula. Theje yang da rang la jivan arpan lasyo ji. Yedi yang je yang la jivan paribartan lasi Theda Bishas, Laji Bisham, Thedangda, Asis, Donshiramula. Tingila Ketangri, Samay Jengada Vistarnu, Vidalaji, Priya Romagade, Tingila Bachande, Parmeshwar Jirangida, Prasasta Asis Donshiramula.

0: जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: डिजिटल कलरला तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: कहाँ गेल्ला खो तिमीहरू? अनि रमिला के भयो, किन राख्यो तिमी? के भयो के भयो के भयो?
1: अनि त मलाई कसैसँग माफी माग्न जानेछ।

0: check. City FM, it's studio time.
1: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु.